0: आप हमारी जापानी खाने पकाएं की वेबसाइट पर मौजूद सार्डिन काबायाकी प्याला बनाने की तरकीब से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आइए सुशी राइस तैयार करते हैं जबकि वो अभी गर्म हों। एक बड़े प्याले में चावल फैला लीजिए, चीनी, सिरके और नमक को अच्छी तरह मिला लें और सुशी सिरके के अमेजे को गोलाई में घुमाते हुए प्याले में डालें। कफचे से तेजी के साथ चावलों को मिलाएं।
1: एक से दो मिनट तक चावलों को मिलाएं। जब आमेजा चावलों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हाथ से झलने वाले पंखे से चावलों को ठंडा कर लें। जब तमाम भाप खत्म हो जाए तो चावलों को पलटकर दूसरी जानिब भी अच्छी तरह पंखा झलें। आज हम गाजर और शीता के मशरूम के स्लाइसिस को दरमियान में रखते हुए सुशी राइस की तीन तहें बनाएंगे। सजावट के लिए हम भिंडियाँ, अंडा और सालमन इस्तेमाल करेंगे। पहले एक तहाई सुशी राइस में तेलों को शामिल करें। चावलों को बराबर फैलाने के लिए एक अलग डिब्बा इस्तेमाल करें। आधे तिलों को छिड़क कर चावलों को ऊपर नीचे करके अच्छी तरह मिला लें।
2: सुशी
0: राइस तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि चावल का हर दाना अपनी शक्ल बरकरार रखे। जब चावलों में अज्जा जैसे तिलों को मिलाएं तो उन्हें फैलाकर अज्जा को यकसा तौर पर उसके ऊपर छिड़के ताकि चावलों को ज्यादा हाथ ना लगाना पड़े।
1: बाकी बचे हुए तिलों को भी मिला दें। दोनों अकसाम के सुशी राइस को प्लास्टिक रैप या गीले कपड़े से ढांप दीजिए। इसके बाद हम चावल की तहों के दरमियान लगाने के लिए शीता के मशरूम के स्लाइस और गाजर की पट्टियां तैयार करेंगे। खुश्क शीता के मशरूम्स को पानी की काफ़ी मकदार में पूरी रात के लिए भिगो दें। अगर आपके पास वक्त कम है तो उन्हें 40 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दीजिए ताकि वो ताज़ा हो जाएं। जायद नमी को नचोड़ कर निकाल लें, डंठल को काट कर हटा दें और टोपी वाले हिस्से को बारीक स्लाइसेस में काट लें। एक बर्तन में स्लाइसेस डालें और 300 मिलीलीटर पानी शामिल करके ढकना ढक कर चूल्हे पर चढ़ा दीजिए।
0: जब पानी में उबाल आ जाए तो आंच कम कर दें। 15 मिनट पकाने के बाद सोया सॉस और चीनी डालकर बगैर ढके तमाम भाप खत्म होने तक पकाएं। माया गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि शीता के इसके स्लाइसेस सतह पर आ गए हैं और जायका भी बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। बर्तन को ठंडा होने के लिए छोड़ दें जिससे शीता के स्लाइसेस को जायका जज्ब करने में मदद मिलेगी।
1: गाजर को 3 सेंटीमीटर लंबी और 2 मिलीमीटर चौड़ी पट्टियों में काट लीजिए।
0: अब एक बर्तन में 200 मिलीलीटर पानी डालें। हल्की आंच पर गाजर की पट्टियां उबालें। 5 मिनट बाद चीनी और नमक शामिल करके 5 मिनट मजीद पकाएं। चूल्हा बंद करके गाजर की पट्टियों को जायका जज्ब करने के लिए बर्तन में ही रहने दें। आइए केक के किनारे सजाने के लिए भिंडियां तैयार करते हैं। एक चुटकी नमक भिंडियों के ऊपर डालकर रगड़ें ताकि रुएं खत्म हो जाएं।
1: एक बर्तन में पानी उबालें और तैयार की गई भिंडियां नमक के साथ पकाएं। 1 मिनट के बाद उन्हें निकालकर बर्फ वाले पानी में डालकर ठंडा कर लें। पानी निकाल लें, डंठल काटकर भिंडियों को बारीक स्लाइसेस में काट लीजिए। इस तरह से हम भिंडियों के कुदरती रंग और साख्त को इस्तेमाल करते हुए उनसे सितारों की शक्ल की सजावट हासिल कर सकते हैं। अब पकाते हैं किंची तमागो यानी बारीक बारीक कटा हुआ अंडे का क्रेप। किंची का मतलब है चमकती हुई पट्टियां और तमागो अंडे को कहते हैं। तेज जर्द रंग के अंडों की पट्टियां अक्सर त्यौहार की डिशों में इस्तेमाल की जाती हैं। एक छोटे प्याले में एक अंडा तोड़ लें, सफेद झिल्ली को हटा दें जो कि सफेद रेशादार उजलात हैं और अंडे की जर्दी से जुड़े होते हैं।

0: एक चुटकी नमक अंडे में डालें और अच्छी तरह फेंट लें। फ्राइंग पैन को गर्म करें। पेपर नैपकिन को इस्तेमाल करते हुए तेल की हल्की सी तह लगा दें। एक खूबसूरत क्रेप बनाने के लिए जितना मुमकिन हो उतना कम तेल इस्तेमाल करें। सबसे अहम नुक्ता फ्राइंग पैन का दर्जा हरारत है। फ्राइंग पैन का दर्जा हरारत चेक करने के लिए अंडे के आमेजे के एक कतरे को चॉपस्टिक से फ्राइंग पैन में टपकाएं और इससे आने वाली आवाज़ को सुनें। अगर आवाज़ बहुत तेज़ हो तो किंशी तमागो ब्राउन हो जाएगा और अगर कोई आवाज़ ना हो तो अंडा नहीं पकेगा। अंडे के आमेजे के कतरों से कई मरतबा जाँचें। दर्जा हरारत को मवाफिक बनाने के लिए चूल्हे को जलाएं और बुझाएं।
1: अगर आप ये आवाज़ सुनें और अंडे का कतरा सफ़ेद हो जाए तो दर्जे हरारत ठीक है। अब फ्राइंग पैन में तमाम आमेजा डाल दें। अगर आप छोटा फ्राइंग पैन इस्तेमाल कर रहे हों तो दो छोटे क्रेप बनाएं।
0: अंडे के आमेजे को पूरे फ्राइंग पैन में फैला दें। फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़कर थोड़ा सा झुकाते हुए चारों तरफ घुमाएं ताकि तमाम हिस्से पक जाएं। आंच को धीमा रखें। जब अंडे की पूरी सतह पक जाए तो चूल्हा बंद कर दें। क्रेप के नीचे एक चॉपस्टिक डालकर उसे पलट दें। पैन की हरारत पर दूसरी जानिब से पकने दें। क्रेप को निकालकर चॉपिंग बोर्ड पर रख दीजिए। अब इसे 4 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियों में काटें और एक दूसरे के ऊपर रखें और 4 सेंटीमीटर लंबी बारीक पट्टियों में काट लें। हमवार कट हासिल करने के लिए छुरी को सीधा नीचे की जानिब खींचें।
1: तो आइए अब सुशी राइस को केक की शक्ल में ढालते हैं, जिसके लिए चावलों को अभी गर्म होना चाहिए। 16 से 18 सेंटीमीटर कुतर का एक गोल केक का सांचा तैयार करें। अगर आपके पास केक का सांचा नहीं है तो छोटी हांडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गत्ते के एक टुकड़े की भी ज़रूरत होगी ताकि चावलों को सांचे में बिठा सकें। गत्ते के टुकड़े को दायरे की शक्ल में काटें, जिसकी चौड़ाई इतनी हो कि सांचे के अंदर फिट हो जाए, और उस पर प्लास्टिक रैप चढ़ा दें। केक के सांचे में प्लास्टिक रैप लगाएं और अज्जा की तहें लगाना शुरू कीजिए। जो चीज़ केक के सबसे ऊपर होगी उसे पहले सांचे के पेंदे में डालिए।
0: आधे सफ़ेद चावल सांचे के अंदर डालें। चावल को बराबर से फैला दीजिए। गत्ते के दायरे को इस्तेमाल करते हुए चावलों को नीचे दबाएं। इससे केक की सतह हमवार हो जाएगी। उसके बाद शीता के मशरूम के स्लाइसेस से जायद पानी निकालकर उन्हें केक की पूरी सतह पर फैला दीजिए। अगली तह बाकी बचे हुए सफ़ेद सुशी राइस की होगी, जिसे गत्ते के दायरे से नीचे दबाएँ। फिर गाजर की पट्टियों से जायद पानी निकालें और उन्हें बराबर से फैला दें। तिलों वाले सुशी राइस शामिल करें और अपना वजन डालते हुए जोर से गत्ते के दायरे से दबाएं।
2: सुशी केक नो दोदाई वा कोनो कटा नी इरेता मामा मोत्ते इकिमाशो।
0: पार्टी में ले जाते वक्त सुशी केक सांचे में ही रखें। भिंडियों के स्लाइसेस और किंची तमागो को डब्बों में रखें। अपने साथ ले जाने से पहले स्मोक सामन को गुलाब के फूल की शक्ल दीजिए।
1: सामन के स्लाइस को लंबाई में आधा काट लें। इनको हम 8 गुलाबों की शक्ल देंगे। हर टुकड़े को चॉपस्टिक के गिर्द लपेटकर गुलाब के फूल की साख्त बना लीजिए। जब गुलाब के फूल बन जाए तो चॉपस्टिक निकाल लें। इसके बाद हम मायोनीज तैयार करेंगे। एक छोटी प्लास्टिक की थैली में 2 या 3 खाने के चम्मच मायोनीज डालें। थैली के मुंह को रबड़ बैंड से बांध दें। बाद में जब केक को सजाना हो तो थैली के नीचे के एक कोने को काट लें और दबाकर बाहर निकालें।
0: जब आप पार्टी में पहुंच जाएं तो एक प्लेट में केक को उलट दीजिए। सबसे ऊपर किंची तमागो छिड़क दें। मायोनीज की थैली को एक कोने से 5 मिलीमीटर काटें और दबाकर बाहर निकालें। केक के बालाई किनारे पर गोल घुमाते हुए लगा दीजिए। सितारों की शक्ल की भिंडियां मायोनेज पर तरतीब से लगाकर सामन केक गुलाबों से सजा दीजिए। लीजिए, सुशी केक तैयार है। पॉटलक पार्टियों के लिए वो डिशें मौजूद होती हैं जो कई घंटे गुजरने के बाद भी अपनी साख और जायका बरकरार रखती हैं।